निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ हरहाओ, हर सिमरत किस चाख ना जोह, हर सिमरत दायत जो ना पोह, हर सिमरत मोह मान ना बधे, हर सिमरत गर्भ जो ना रुद्ध, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माई अकेला, जात जात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गद होए, हर का नाम जपिगे साध संग।

नमस्कार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सदगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव वीर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंत पनाव मेरे पाई, नाव मेरे संग अंत होए सगाई।

ता मृतक का क्या खड़ जाई, कहत कबीर हों कहो पुकार, समझ देख साकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, आराम भगत है सदा सुख।

ओ अंगम प्रिंग माया में खापे, माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जीते ते डकाई, अरहाव पंखी मृग माया में राते, साकर माखी अदग संतापे।

आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

गढ़ पीतर यूं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत होवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सिझाया, सात संतोख लै।

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे, बावन कोट जाके रूमावली, रामन सयना जयते शली, सहज कोट।

अंतर मनसा हरे तय कबीर सुन सार्ग पान दे अपय पद मांग उदान भैरों बाणी नाम दियो जियो की कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो यो करना अंत रूप तेरे नारायण पर थान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो

परमत नाम दियो नाके बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुहे आनी दूध पियो गोबिंद राए दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद

परेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुह राखे पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरण आगस जन नखे बिदारियो।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा अगर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल कहे।

आग गुरमेल मिलावे करे दात गुरसुख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुष दे कौ नानक पावे विरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब पावे सेवक सेवा करे जीवित मरे

संत प्यारी जे तू पढ़िया पंडित बीना दोए अखर दोए नावा परमत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा बसंत हिंडोल महला पहला राजा बालक नगरी काती दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पढ़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन बिद पाओ प्राण पति रघाओ पीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडय पाया चंद सूरज दोए करही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया आराम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रेह कया सुने ना खाया मन है

भगत वछर हर वस्ते मन आए गुर कृपा ते सहज सुभाए भगत करे विचो आप खोए तद ही सत मिलावा होए भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार गुर कै हेत साचे प्रेम प्यार अरहाओ भगत करे सो जन निर्मल होए गुर सबदी विचो होमै खोए हर जीव आप से मन आए सदा सांत सुख सहज समाए साच रते तिन सद

जे हर जीओ पावे, सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए। बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया।

मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हारस पुन्य रहाओ सत संगत साध दया कर मिल हो शरणागत साधु पान्य हम डुबदे पाथर काढ़ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पान्य हर उस्त तारो अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लान्य हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो कुम वान्य जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवो हर लान्य जन नानक मन तन अंध पया है गुर मंत्र दियो हर पान्य बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुके एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुर सेव कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार।

काट काट रयासुमाय, जाके भगत आनंदमय, जाके भगत को नाही खय, जाके भगत को नाही पय, जाके भगत को सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रवरयो समाय, नानक जाचे एक दान, कर कृपा मुझे देहो नाम। बसंत मोहल्ला पंजवा, मिल पानी ज्यों हरे बूट, साध संगत त्यों

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहु दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत मगल्ला पंजवा राम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जनासो सदा संग रहाओ संत जन किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

झूठ दूत सा प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देद संतर रहे ताए किरत ओ ना का मिटसनाहे। कोई अपना बीजिया आप खाहे जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए। नारक जीवे हर चरण ते आए बसंत महला पंजवा। गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रव करी माया। सर मनोरथ पूर्ण काम जब जीवे नानक राम नाम। तारुत सुहावी जिद हर चित आवे बिन सदगुर दिसे बिल लांती। सागत फिर आवे जावे रगाओ से तनवंत जिन हर प्रवरास। काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपय पद पाया। गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो लिवास। हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रव रया। गुर मिल नानक हर हर कहया हरिट सिद्ध।

सांत सहज गृह सद बसंत गुरपूरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर घर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रवे आप गुर अपने को

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग तरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आप न सूझे। परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी। मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ उपत परलो प्रवते होवे।

कई भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चुका, रतन नाम जपाया। कृष्णा सगल विनाशी मन ते निज सुख माए समाया, जाको होत दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावे। कहो नानक ए विद की संप ओ गुरमुख पावे, बसंत महला नामा मन कां बसारियो राम नाम। तान बिनसे ज्यों परे काम रखाओ, यो जग तुए का पहार, ते साचा मान्या के विचार। तन दारा संपद ग्रेहे, संग न चाले समझ लेहे, एक भगत नारायण होए संग। कौ नानक पाइते एक रंग, बसंत महला नामा कां भूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रखाओ, सब सुपने कै यो जग जान। बिन से शिन में साची मान, संग तेरे हर बस्तनीत, निज बासर पजताहे मीत, बार अंत की होए सहाए। कहो नानक गुणता के गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कार पहला, दो तुकियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद।

नापण थज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अत लुद लुबानो बिखमाए ने अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पुल्लो परमस पावर तार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैगल जो फासस कामहार कड़ बंधन बाध्यो शीस मार मन मुग्धो दादर भगत हीन दर पलट सरापी नाम बीन ताके जात न पाती नाम लीन सब दुख सुखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत ना साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल होमे कड्डे तोए सदा मुक्त बंद न सके कोए सदा नाम खाने और न कोए मन हर के भाणे आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वरते हुक्म सुमाए दू सू सब तिसर जाए।

तू अपुल ना पुलो कदे नाहे। गुरु शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे। मन नानक मानिया सच सलाहे,

लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परे पार तन्ने सेव्या बार बुद्ध तिरलोचन गुरमिल पई सिद्ध

नाई उधरे सैन सेव मन डीग ना डोले कहूं जाए मन तू पी तरसै शरण पाए जे अनुग्रह ठाकुर कियो आप से तैलीने भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचारे कोए एवद देख मन लगा सेव तबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जीव बसे संग रविदास ते आए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे हार सिमन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत डंड गोविंद पजो।

दुख सुख बंधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंद नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मह गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हाँ।

मंड तैसे संत जना राम नाम ना छाड़े गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न हुए ता

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरैना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर था।

प्रीतम जन संतो मोए मार्ग दिखलावे। तिस जन के हों मल मल धोवा पाओ। हर जन को हर मिलिया अर श्रद्धा ते मिलिया गुरमुखर मिलिया। मेरे मन तन आनंद पए मैं देखिया हर राव। जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीशर कृपा पई। मैं अनदनो साध साध सदा हर जपिया हर नाव। सारग महला चौथा जप मन निरपो सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूर्त आजोनी।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, सासृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पो जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत्य कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एक।

लो माथा, हमरे मस्तक संत तरे हाथा, साधे मंत्र मोर लो मनुआ, ताते गत हो त्रै गुनिया, भगते दर्श देख नैन।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहु विद उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रेदर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परे कुसुमाही, तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रगाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई, करो कृपा संतो मुए अपने।

सार समागम कोड़ बैकुंठे पाए रघाव दुलाब दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अभमाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सास ओई कर रहया देह नाओ बलिहारी रखाओ क्यों दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी हा दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ ना ही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी और एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लब देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर।

पै एका जैसे उठ्यो तै ही आयो सभी एके एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सार्ग मोहल्ला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे पे आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट ना करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम खुटेर जो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लागे सार्ग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पए है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना।

अपने पै सुख अपने ही पै बिरथ अपने पै मान अपने पै तान अपने ही पै अर्थ किन ही राज जोबन तन मिलख किन ही बाप मै तारी सर्व थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सार्ग मोहल्ला पंजवा। झूठो माया को मदमान त्रो मोह दूर कर बपरे संग गोपाले जान रखाओ मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध तराई।

अंधकूप में पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

निर्वैर संग वैर रचावे हर दरगे ओहारे आद जुगात प्रभु की वड्याई जन की पैज सवारे निरपो पय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नान प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन स्यो सगल संताप मित्र सत्तर पेग समत बीचार्यो सगल सुंपाखन जाप तप्त बुझी शीतल आगाने सुन अनहद विश्व।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे, बिश

साध संगत होहे निर्मल बौड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तू निथावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सरबल जाओ सारग महला पंजवां बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुगत पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रघाओ उत्तम कथा सुनी दे श्रवणी मया करो भगवान आपत जात दो पग पूरन पाइये सुख विश्राम सोधत सोधत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक एक राम नाम बेन अवर सगल बिद पूरी सारग महला पंजवां साचे सदगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नासे चरण कमल बलिहारा रघाओ सत परमेसर सत साध ज्ञान निज हर का नाओ भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाईए

ठाकुर सब ताई निकट बसे सब नेरे रगाओ बंधन तोर राम लेवलाई संत संग बने आई जन्म पदार्थ पयो पुनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रा मेरे तो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे।

प्रभ सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल राख लेहो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नान प्रभ मेरा साध संग तन माल सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

चितवो वा अवसर मन माहे होए एकत्र मिलो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रखाओ बिन घर भजन जेते काम करिए तेते बिरते जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो जिस बिन दूसर नाहे जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछुए लाहे चरण कमल नानक मन बेदेओ चरण संग सवाहे सार्ग मुहला पनवा मेरा प्रभु संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिमरत नाम स्वामी रगाओ साजन मीत सखाहर मेरे गुण गोपाल कर राया बिसर न जाई निमक हृदय ते पूरे गुरु मिलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके एकाले पूर्ण परमेश्वर पौनी नाम।

पंजवा त्रिसना जलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात अंत पर तिहार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ए इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

पेख दयाल अंध सुख पूरन हर रस रप्यो खुमारो रघाव निर्मल पै उजल जस गावत बौर न होवत कारो चरण कम से डोरी राची भेट्यो पुरख अपारो कर गए लीने सर्बस दीने दीपक पयो उजारो नानक नाम रसक बैरागी उले समूहा तारो तारग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे प्या गोविंद जीन को दाता माया संग लपटा हे राव नाम सार चले अन मार्ग नरक कोर में पाहे अनक सजाई गणतन आवे गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दाजन तेरा

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जा किरदे वसे पए भंजन, ते जाने सगल जगान। खेन पल बिसर नहीं मेरे करते, तो नानक मांगे दान। सार्ग मोहल्ला पंजवा, बूठा सर्वथाई में हो। अनंद मंगल गाओ हर जस, पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ। चार कुंट दह दिस जल निध, ऊन थाओ ना के हो। कृपा निध गोविंद पूर्ण, जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी, सत साह संगे हो। सत तेजन जिन प्रतीत उपजी,

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर अंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद खोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सखाई, सच्चा सच दाता कर्म विदाता, जिस पावे थे ना ए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत संजम करनी किरत कमावे, आवन जान रगाई, थे दर साचे साज कमावे, जिन गुरम

पूर्ण मन मोहन घड़घड़ सोहन जब किंचे तब शाई क्यों ना अराधो मिल कर साधो करी मोतक बेला आई अर्थ दर्भ सब जो किश दिसे संग ना कछु जा।

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है। अंत न पारावार पौड़ी हर का नाम निधान है। सेवे सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए।

योगी का जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली ने आव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे गुरमती नाव पाईए नानक गुण गावे श्लोक महला पहला दुख ज जमन दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखिया पंडा खुलिया सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पशु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे जा जियो विच्चों कड़िये पशु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जय पांडे, और बहुत सिख क्या दीजे पौड़ी, पूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत पधाए दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बो प्रीत लगाया, वेख दिया ही माया तोहे गई, पछते पछते

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद। तेस ज्यो क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए। दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह मुठा शह बरलाए। सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोह।

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना होट माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते त्रंग त्रंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फोन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद सा संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, छाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काजना कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो पुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, अरहाओ आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां विसासा इस पांडे का, इत लग लागे ठनका, सागल धर्म पुन फल पाव हो।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सौना।

जीया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आयरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जे ही रुत काया सुख तेह, तेहो जे ही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत के ही। मलार महला पहला।

जिस में नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस साचै नाए। मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथदान नित नित लेहो

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

माया मोह अज्ञान गुबार, मनमुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन कंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए,

बिन से दुख पाए, तृष्णा जलया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुविध थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार, विख्या मैल विख्या व्यापार, मार्जन।

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाग साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लार रंगी यो आया, तौ मैं सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक लेख लखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए, मलार महला पंजवा, खीर धार बारक जब होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, ताको तृप्त अगाई, हम बारक पिता प्रवदाता, फूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अगन कर मिले, माता पिता कंठ लाए रखे, आनंद सहज तब खिले, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक पूख कैसी। नामृद नाम निदान ग्रे तेरे, मन बांछे सो लैसी, पिता कृपाल आग्या ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रवचा है, मोहे हृदय बसे नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जोर आहार करया, तजो सगल अंदेसा, कार्य सगल अरंभ्यो करका, ठाकुर का पहारूसा, सुनिए बाजे बाज सुहावी, और पया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह

हम एक गिनत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रखाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। यो मन दे किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सुख पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण तिहाई।

तेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया। मलार मुहल्ला पंजवा बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। किते उलास आस मिलबे की चरण कमल रस पीवन रखाओ।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां, दुष्ट मोए बिख खा।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संग राम।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती गुर पावे प्रयो पाई प्रयो नाले सदगी सच संगे नदरी मेल मिलाई।

बिन एकखे न रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब की सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कार दूजा, एक ओंकार।

मुक्त होए पाए मोह द्वार। मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ। हर अपने भाणे सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार। हर अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार। हर के भाणे सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोए। वाह वाह कर प्रसाद आई है, तेस जेवड़ अवर न कोए। आपे बगसे मेल लय, कर्म प्राप्त होए। साचा साहेब मारो, सतगुर दिया दिखाए। अमृत वरसै मन संतोखिए, सच रहे लिवलाए। हर के नाए सदा हरियावली, फिर सुके ना कुमलाए। बिन सतगुर किने ना पायो, मन वेखो को पतियाए। हर कृपा ते सतगुर पाइए, भेटे सहज सुपाए। मानमुख परम भुलाया, बिन पागा हर तन ना पाए। त्रै गुण सबा तात है, पढ़ पढ़ करे विचार। मुक्त कदे ना होवई, न पाएन मोह द्वार। बिन सतगुर बंधन ना टुट ही, नाम न लगे प्यार। पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके, वेदां का अभ्यास। हर नाम चित ना आवई, न निज कर होवे वास। जम काल सिरो ना उतरै, अंतर कपट विनाश। हर नावे नू सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नदर करे गुर पेटिए, हर नाम वसे मन आए। नानक नामे ही पत उपजे, हर सोरहां समाए। मरार महला तीजा, अष्टपदी

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईश महेश्वर सेव तिनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, कर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। सलोक महला दूजा, सावन आया हे सखी कंते।

गुरमति शब्द सूरह काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवन अपना बिना विटो हो वारिया। सलोक महला तीजा ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदा रली। महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिस नूं मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी। तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

करे ता वरते सब लोए वुठे जियां जुगत होए धरणी नूसी गार होए नानक यो जगत सब जल है जल ही ते सब कोए गुर प्रसादी को विरला बूझे सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू तनी।

सच्चा आया पूछ न सके कोई जाखस में पाया नानक सच सलाहे लिखिया पाया।

मूर्ख भुख न जाई, दूजे सबको लग विगुता, बिन सदगुर बूझ न पाई। सदगुर सेवे सो सुख पाए, जिसनु कृपा करे रजाई। सलोक महला पहला, सारम तरम दुइ नानका, जे तन पल्लै पाए तो तन मित्र ना कांडिए। जित सिर चोटा खाए, जिनके पल्ले तन वसै, तिनका नौ फकीर। जिनके हिरदे तू वसै, ते नरगुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ीए,

अंधेका नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्तका नाव चौधरी, कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए, कलका यो नियाओ मोहल्ला पहला, हरणा बाजा तैसकदारा, इना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात पहायन, अगे ना ही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बिना, जिनी कमाना नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे, ता उपर हो वेशाओ, अराजे सी, मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते, चाकर नहंदा पायन खाओ, रात पेत कुत्ते हो चट जाओ, जिथे जिया हो सी सार, नक्की वड्डी लाए तबार पौड़ी।

रूप जात जोबन पंजे ठग एनी ठगी जग ठगया इन्हें न रखी लज इना ठगन ठग से जे गुर

जन्म बिरतिया अंत न पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गुबार तिन सच ना पाया चले नाम सार तामन तत्या बल्दी अंदर तेल दुबदा कत्या।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

बल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाव, कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कीर्त प्रभु की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर दुआ।

पंजवां आनंद रंग विनोद हमारे नामो गावन नाम ते आवन नाम हमारे प्राण आधार है हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना हर नाम हमारे कार्य सवार है हर नामो शोभा नाम बढ़ाई पौजल विखम नाम हर तार है अगम पदार्थ लाल अमोला

संगा हठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौं रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यों ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पावत जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहल्ला पंजवां कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान देखता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान फिर दे गोविंद गाए चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोना कृपाल दया मया धार नानक मांगे नाम दान तज मोह परम सगल अभिमान

सतगुर मैं सतगुर शरण मिलावे गो कानड़ा मोहल्ला चौथा मान गुरमत चाल चलावे गो जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे गुर अंकस।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन

चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा श्लोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

आरुतम गर प्रव नाम है गुरभजन सुभागे लीता दुख दाल दिल सबो लह गया जान नाव गुरु हर दीता सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर होम में रोग है ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग वन्याय मिल सदगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम सगारवा जां देखा हर नैने नानक सो प्रामय मिले हो जीवा साध सुने पौड़ी जगन्नाथ जगदीश सर करते अपरंपर पुरख अतोल।

रामा राम रामे अंत न पाया। हम बारक प्रदपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी एक तिल ने कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत न पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमादो गुण गावे हर राया। तुम जल निध हा मीने तुमरे तेरा अंत न कतहू पाया। जन कहो कृपा करो मसूदन हर देवो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया। हर घर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती मन हर घर हर बसया। हर घर हर कीर्त जग सारी घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई सब सागत खोज पया। ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक पग नागन छोए जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखया। कहां पया दायत करी बखीली सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रभ किए सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक सर।

श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ एत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें समान जद कथा तद पेखी है हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवां गुरु नानक।

परस निपरस पै साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। सागत सूत बहु गुरजी परया, क्यों करतान तनीजै। तंत सूत केश निकसे नाही, सागत संग ना कीजै। सतगुरु साध संगत है निकी, मिर संगत राम रवीजै। अंत रतन जवेहर मान, गुर किरपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

प्रभाती महला पहला आपत करे ना राख्या जापत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ। जैसे हरड की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगा।

पाई। सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनू देवे, ते सवसे मन आ।

बनाए बहुरंगी सिद्ध उपाए प्रखेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नू रिजक दिया कली काल में रव्या राम घट घट पूरया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रखाओ गुप्ता नाम वरते विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिना हिरदे प्रगटया जो गुरसरण आई पज पया इंद्री पंच पंचे वसयाने खिमा संतोख गुरमत पावे तो तन तन हर जनवड़।

जो कुछ करे तो नरक पर एको सब एको प्रवर्त सब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती मोहल्ला तीजा मेरे मान।

अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रखाओ आभो संत मेरो मेरे पाई मिल हर हर नाम वखान कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत मैं हर हर वसया मिल संगत हर गुण जान वड़े भाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक गौ गुर कृपा धारी हर नाम दियो खिनदान प्रभाती मोहल्ला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोले सवरैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोग।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहे आ मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कहे सदा बल जाइए, हार सिमरन जे गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न पवे ईगा ऊहा चरण पूजारे मुख उजर साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ।

दुख पग तरन पालन जोग सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवे संजोग रैन दिनस त्याय हर हर तजो मन के परम साध संगत हर मिले जिस है पूर्ण कर्म जन्म जन्म विखाद बिनसे राख ली ने आप मात पिता मीत पाई जन नानक हर हर जाप प्रभाती महला पंजवां विपास पड़ताल।

तर स्नान तर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नहाए कह सब उतरे बौर कमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध बजावे ताला अंतर कपट फिरे बेताला वर्मी मारी साप नाम हुआ प्रभ सब के जाने जंतु किया कुंवर ताप गेरी के बस्तरा अबदा का मारिया ग्रेते नस्ता देश छोड़ पर देशे ताया पंचंडाल नाले ले आया तान फराए हिराए टूका कर कर मांगे तृप्तावन ते चूका बनता छोड़ बाद नजर पर नारी वेस न पाई गे महा दुखियारी बोले ना ही होय बैठा मोनी अंतर कल्प पवाएगे जोनी अंत रहता दुख देही सहता हुक्मना बूझे व्यापिया ममता बिन सतगुर करे न पाई परम गते।

पूर्ण पुरुष भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नहि बिसरंत नहि बिसरंत नारायण है, नहि समरथं नहि सेवकं नहि प्रीत परम पुरखोत्तमं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

हर घर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर्वेण कुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्धि

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्पमाया

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमं ताकत पिसरंगता सुरजन है अस्तित्वं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भवय पय अटवीयं महानगर वासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण तब भय विमुंच।

नाना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवं नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत ए लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जी आभो प्रकारं अनक पांद बोडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सा समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ भागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियाल खर है बिखम स्थान मन मोह मदरं मां असाध पंच तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरं अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखियं हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदं परम बादं अवर्तिथ है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधव गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन हे पपीर का ग्रस्ते गोविंद सिमरण तो

लूटना है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

आवे दज होत है निर्दावे रहे निशंक। जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों।

पियो पियो बूझो नहीं, खट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे। अर्ज उर्ज के

पीर जौ तो साध पिरम की सीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जौ तो साध पिरम की पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। टूंट डोले अंध गत हर चींत नाही संत, तय नामा क्यों पाई है बेन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कह करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे।

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोय ना होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग स्तानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ए कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार। फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिदी लाए परांद दरवेसा नू लोड़िए रुखां दी जी रांद। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेस। तत्ती तोए ना पलवे जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जां कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले। फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़र कोदरे पया।

फरीदा इट सराणे पोए सवन कीड़ा लड़े ओ मास केतड़िया जुग वापरे एकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टुटी ना गर लज अजरा ईल फरेस्ता कहे करनाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टूटी ना गर लज जो सज्जन पोए पार थे से तो आवे अज फरीदा बेनवाजा कुत्या ए ना परी रीत कभी चल न आया पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा उजू साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानवे सो सिर कप उतार जो सिर साई नानवे सो सिर की जे काए उन्ने हेठ जलाई है बालन संदे थाए फरीदा किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जने ओहे तय पासों ओए लद गए तू अजे ना पतीन ओहे फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाहे अगे मूल ना आवसी दोज किसंदी पाहे महला पंजवा फरीदा खालक खलक महें खलक वसे रब माहे मंदा किसनू आखी है।

सदगुर प्रसाद तोई पुरख सेवर साचा जा का एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तार सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुधि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पोबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाधरा सिमरे नखेतर अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर सूर नाम उलस है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शेषन काज समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवजल तरया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर केल बखरया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपी सुर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सदकर संग उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया नाम केत संसार किरण सुर तर सख उत्तर दक्षिण पुब जेस पश्चिम जद पख जमत इसके अथ जित नाम हरदे निवास सुनल गण गंधर्भ छे दर्शन असस पलो प्रसिद्ध तेजो

तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुकुम पावे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दृष्ट

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर थरिया। हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे। कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया। ते पीवे संत करे मन मज्जन खुब जिनो सेवा करिया। तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा। सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद फल पंच करे। कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे। सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे। मिट्या जिन मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे। काव काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे। अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो। दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो। सदा चाहे हर पाए प्रेम रसया पे जाने। सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने। नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कल उच्चरै तै अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश। मिलत सा उपजय।

सिद्धर जावे, नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो, सतगुर नाम एक लिवन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, धर्म कर्म पूरे

परमानंद गुरु मुख मत्या श्री गुरु साहेब सभी ऊपर मन भय क्रम से विगे सच्चा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कमल नयन मधुर बयन कोड सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो। देख रूप आतन रूप मोह महा मग पई किंकनी।

पासा गुरमुख संगत सबे विचार हो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाईगे परमार्थ तत्संगत स्थिती मन खजना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आज कोई न जाने शिव ब्रंतर ध्यान नित्य जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गण समथ तरन तारन प्रसोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त बसै गुरु समरथ गय करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कहो हुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण कहो मथुरा जन जान कही जी साच तो और कछु ना विचारन कहो हर ना भूत बड़ो कल मैं हर सागर पार उतारन कहो संत की सत संगत संग

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गहर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्य रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कवक को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए ना तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुरु सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई। गुरु रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर गात तेज पुंज ते लोक प्रगास। देखत दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बेगास। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबास। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर ताचो तख्त गुरु रामदास। तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिदर सिद्ध न छोडे सत। दान बडो अतवंत महाबल सेवक दास कहो त्यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नी अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फिरे। अविनाशी अचल अजो नी संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण सुमरत सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंग अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुपुत हर के जोगण। अम्बरीक जय देवतर लोचन नामा अवर कबीर पण। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जगतर परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। मनसा का स्मरत तुझे नार ताम क्रोध मिट्यो जो तिण। वाचा का स्मरत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल पड़ जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। जे सदगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खेन। जे सदगुर सिमरंत हृदय घर नाम दिनो दिन। जे सदगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे। जे सदगुर सिमरंत हृदय सिद्ध नाम निध पावे। तो ही रामदास गुर बल पान मिल संगत तन तन करो। जे सदगुरु लग प्रा पाई है तो सदगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कुमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास। ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। तब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ये अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कह गुरु रामदास। जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो निज बस्त्र घर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रगट सुवास। रूप प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लयत उपजो जो परगास। जे पिकत अत होय रहस्यमान तोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानेओ इन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंग अंग संग पयो सायर तेन शब्द सुरत की नीव
ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਥੋਡੀ ਸਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਏ ਫੂਲੇ, ਸੁਧ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਏਕ ਉਤੋਂ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਏਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਮੋਹ ਮਲਬ ਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਲੋਭ ਅਮਾਨ ਸਿਉ ਚਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ। ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ, ਸਿਰ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਿਰ ਆਦ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ, ਜੋਗ ਪੁਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜ ਸਲ ਪਾਣ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗਦਲ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ, ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਹੈ। ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ, ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਥਪਿਓ, ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰੰਗ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਬਲ ਧਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈ ਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ, ਹਾਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ। ਬੜਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ, ਰਿਧ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਓ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇ, ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਵਤੀਜ ਪਤੀਣਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ। ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ, ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ। ਬੇਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ। ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਵਿਖਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ। ਆਜੋ ਨੀ ਸੰਭਉ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ। ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਉ, ਆਗੇ ਗੈਣ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੈਣ। ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਉ, ਅਸੰਭਉ ਉਦਵਯੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੁ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਲਾਇਓ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜਭਾਗੀ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰਸੇਤਾ। ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੁਝ ਜਸ ਭਗਤਾ। ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਨ, ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅੰਗਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ। ਮਹਾਂਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਓ ਨਾ ਹੁੱਟੇ। ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨ ਖੁੱਟੇ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬਮੈ, ਤੈ ਚਿੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਜੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਿਓ। ਭੈ ਨਿਰਪੋ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ। ਅਗਮੈ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਰਾਜਮੈ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਬਰ ਫਰਾਇਓ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ,
अलख अपार पुरसूर शब्द होमे निवारयो पंचारण दलयो सुन सहज निज कर सहारयो हर नाम लाग जग उधरयो सद गुर दे बसायो गुर अर्जन कल उच्चरै तै जन के कलस दी पायो सोरठ गुर अर्जन पुरख प्रमाण पारथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सदगुर शब्द सवारयो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सदगुर संघेत नाम लाग जग उधरयो जगते उदाहरण नाम सदगुर तुठे पायो अब नहाय अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तादे अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सदगुर थिर कियो अमर दास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंज प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम ससंतोख तरयो ओर आद पुरख प्रतख लिखो अक्षर मस्तक तोर प्रट जोत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सग सिट लग बेतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बासर रैन बास जा कुहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग गयो बेन भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्प में अर्जन गोर भगत के हेत पाए रहो मिले राम स्यो अंत न पावत देव सबे मोन इंद्र महासव योग करी हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माये करी जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मद चू कह रे मन भेद बपेद न जान पियो पर तचर दे गुर अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पागल लार उदय तब

पै काटे सो पाप तिन नरों के। गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन कौ दे आयो। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। श्लोक 12 ते वधीक महला पहला। उतंगी पै ओरी गहरी गंभीरी ससर सुइया किव करी निम्न न जाए थनी। गच जे लगा गिड़बड़ी सगिए तौल हरी चे पीटन दे डिठ मैं मुंद न गर्भ थनी। सुन मुंदे हरनाकिए गूड़ा वैण पार पहला वत स्ञान कै ताकी तेवा पार। दोही दिते दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लो मुंदे विचार। तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तेसो न्यो ना कीचई जे दिसे चलन हार। नानक जिन्नी इव कर बुझ्य तिना बिटो कुर्बान जे तू तारू पान। ताहू पुछ तिड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी चाड़ चखड़ ओहा।

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधिकार बंतर की सेना सेवी है मन तन जोज अपार सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग उला दैत न समझई इन पग की ये काम नानक वे प्रवा

ना पदार्थ पाया अतुट परे पंडार। हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार। नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार। गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश। काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए। एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए। जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए। बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए। सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए। नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए। मानव चंचल मत है अंतर।

सतगुर का पाणा मन लैन, हर नाम रखे उरतार, ऐथे उथे मनियन हर नाम लगे वापार। गुरमुख शब्द संयाप दे इत साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार। जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार, नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार। जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ, गुरमती नाओ मन मसे सहजे सह समाओ, वडभागी नाम त्याया ऐस लागा पाओ। जन नानक मंगे तूड तेन तो सद कुरबाने जाओ, लग चौरासी मेदनी इसना जलती करे पुकार। यो मोह माया सा पसरिया नाल चले न अंती वार, बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बुझिया ब्रह्म विचार, इसना अगन सब बुझ गई जन नानक हर उर तार। असी खते बहुत कमान दे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्स ले हो हों पापी वड गुनेगार। हर जियो लेखे वार न आवई तू बख्स मिलावनहार, गुर तुठे गरपा मिलिया सब किलवक कट विकार। जिन्ना हर घर नाम त्याया जन नानक तिन जयकार, विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के भय पाए। जन्म मरण हिचल पए गुरमुख नाम त्याए, गुर साधु संगत मिले हीरे रत्न लभन। नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन, मनमुख नाम न चेत्यो तिग जीवन तिग वास। जेदा दिता खाना पहनना तो माना वस्यो गुणतास, त्यो मन शब्द न भेद्यो त्यो होवे करवास। मनमुखिया दोहा गणी आवन जान मुहियास, गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास। हर हर नाम उरतारिया हर हिरदे कमल परगास, सतगुर सेवने अपना हों सद बलिगारी तास। नानक तेन मुख उजले जिन अंतर नाम परगास, शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्दे मुक्त न होई। एक करे वो कर्म विगुते पाए दूजे परज वगोई, नानक बिन सतगुरु नाओ ना पाई है जे सो लोचे कोई। हर का नाओ आतवड़ ऊंचा ऊंची हुई ऊंचा होई, अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई। मुख संजम खच्छा ना हो भाई तर पेख पवे सब कोई, गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई। अंतर आए बसे गुर शब्द विचारे कोए, नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए। माया मोह दुख सागर है बिगद उत्तर तरिया ना जाए, मेरा मेरा कर दे पचमुए हौमे करत विहाय। मन मुखा उरवार ना पार है

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुपहाय ऊना मैल पतंग न लगई जे चलन सदगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब किछ सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो अवदना की तो विचार ओए मानस।

सदगुर का फुरमाया मन न सकी दुत्र तरिया ना जाए नजर करे जिसे अपनी सो चले सदगुर पाए सदगुर का दर्शन सफल है जो इच्छे सो फल पाए जिन्नी सदगुर मनिया हौ तिनके लागौ पाए नानक ताका दास है जे अन दिन रहे लिवलाए जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है नानक मिले सो पाए गुरमुख इओ मन रहसी है जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे जा सो देखन अपना नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो।

सोई सब कमाए, साब कष्ट दे वस, दूजी नाहे जाए। नानक सुख अनंद पए, प्रभु की मन रजाए। गुर पूरा जिन सिमरिया।

जत पहारा तीर्ज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तिर रहे समाए

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संयम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिबरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया नो, देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेलो, देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब स्यो मेलो। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए। एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान। गुर मिल पौजल लंघीऐ, दरगै पत परवान, नानक ते मुख उजले, तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो, वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल। अगे साहो सुजान है, लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चल।

मैं मछली कैसे अंत लहां, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी।

आपे सच पावै ते सच अंधा कच्चा कच्चन कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेही ताते हाथ नाओ फुल पाओ फल।

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुरु पाए। कोलो धारै अपना धन जने दी माए, हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारो निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है गुरपूछ करै व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करै, गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार। पाखंड भगत ना हो वई दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बिबेक विचार। सो सेवक हर आखिया जो हर राखे उर तार। मन तन सो पे आगे धरे हमें विचों मार। तन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे ना आवै हार। कर्म मिलै ता पाई है मिण कर मैं पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम त्याई है सहजे नाम समाए। अंदर रचै हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजे पाए, गुरसरनाई सुखल है अंदर नाम त्याए रहाओ। साचे महल न लग गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञाना दे राजाए। मनमुख मैले मल भरे होमै तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतरै मर जमै होए खुआर। धातर बाजी पलच रहे ना उर वार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा, मनमुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी ना होए। शब्द ना चीने सदा दुख हर दर गै पत खोए। होमै गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मानो अहनिस पूर रही नित्यासा, सतगुर से मोह पर जलै करी माए उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावे बिकसै हर बैरा गया नंद। अहनिस भगत करे दिन राती होमै मार निचंद। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर पाया सहजानंद। सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम वसाए। अंतर लागना ताम समूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया आगाए। जिन किने पाया साध संगति पूरे भाग बैराग। मनमुख फिरै न जाने सतगुरु होमै अंदर लाग। नानक शब्द रते

गुरमुख पावै कोए, नाम निदाना खुट है वड भाग प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं अहंकार, हर जियो सदा त्याए तू गुरमुख एक अंकार रहाओ। गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी विचार, हलत पलत सुख पाए दे जप जप हृदय मुरार। घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार, सतगुर ते जो मोह फेर है मथे तिन काले। अंदन दुख माम दे नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है आपे बस करे, कहना किशु ना जावई जिस पावे तिस दे। नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा। सच्चा साहेब सेवी है सच वड्याई दे, गुर प्रसादी मन वसै हो मैं दूर करे। एह मन तब तां रह जाए आपे नदर करे। भाई रे गुरमुख हर नाम ते आए, नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाओ रहाओ। मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाओ, बहु जो नी पौंदा फिरै जो सुनै कर काओ। गुरमती कट चरना शब्द मिले हर नाओ, त्रै गुण बिखिया अंध है माया मोह गुबार। लोभी अन कौ सेम दे पड़वेदा करै पुकार, बिखिया अंदर पच मोए ना उरवार ना पार। माया मोहे विसारिया जगत पिता प्रतपाल, बाजहो गुरु अचेत है सबदी जमकाल। नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल, श्री राग महला तीजा। त्रै गुण माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए, कर कृपा मेलाया नु हर नाम वस्या मन आए। पोत्या जिन कै पुन है तिन सत संगत मेलाए, पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

अंतरा दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना।

आओ आपे जग जीवन सुदाता आपे बख्श मिलाए जी जानते क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ाई आपे सेव कराए दे कुटा मोए लोभाना चलद्या नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जो दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निधान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलया आए गुर शब्दी सालाही है रंगे सहि सुभाए सच्चे सच समाया मिल रहे ना विछड़ जाए जो कुछ करना सो कर रहया अवर ना करना जाए चिरी विछुने मेले अनु

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार पहला पहर धंधे गया दूजे पर सोया तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया कदी ही चेत ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिस ते सोजी मन

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सिवलाए। मिल साधु मुखी उजला।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिस कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वडाया पार। बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए नेदा राया दार। जिस पेख तो किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईए मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधिए।

आए कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान त्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हऊ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, ऐथे मिलै वडियाईया दरगे पावै थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किश्त सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख।

सहजे शिव तीर्थया भवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइए साधु तूर लूक मावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिए सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर ने

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हाँ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वड्याईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिया मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समर्थ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

अंबड़ कोई न सकई, यहों किसनो पुछन जाओ। वरना वर्ण ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तें दे। हुक्म सवारे अपने, चसा ना ढिल करे, सबको आखे बहुत बहुत, लैने के विचार। केवड़दा ताय आखिए, देके रया सुमार, नानक तोटना आवे।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी संग गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवण जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझे अपना वस्त्र ही कर बार वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वण जा रहा स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए नाम विछड़ जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सच नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदा

आर संत सभा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण रव रहे ना तिस्काल संताए साहेबा तोल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वापारी वन जा रिया आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै रजाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी साचित राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तो लाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाईए रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाईए सर प्यार मुक्त पदार्थ पाईए अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल।

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकस असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखकणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देहे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए तां की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाईऐ सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाईऐ तिरपमन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंख नू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हों मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना पर्यंक समाए रहाओ पुली फिर दसंतरी पुली गृहता जाए पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए तरों विशुनी क्यों मिले गर्म उठी बिललाए विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हमै विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए
ਘਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਉਤਸੈ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਅਪਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤਬੰਧ ਪਕਰ ਨਾਰ ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਹਉ ਮੋਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵੇਖ ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ ਆਖਣ ਆਖੇ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰਬਿਨ ਬੂਝਨਾ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਪੈ ਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੇ ਪਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀਐ ਮਨਮੁਖੋਟੀ ਰਾਸ ਅਹਿਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ

महले पहले सतारे अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वाक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल ना जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन ही वसिया।

श्री राग महल्लाती जा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाज।

लो व्यापत है अद कही लपटाए, बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है अह मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए, बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राघव

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है होमै जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मेट भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़ै दूजा भाव न जाणै सतगुर भेटै निर्मल होवा अंदन नाम वखाणै एको पड़ै एको ना बूझै दूजा अवर न जाणै खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै तां गत मित पावै हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सो चित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाउ चेतै तां गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुरे अपने विटाओ जे हर से ती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंद हर से ती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भक्ति उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुणी उचरै भक्त करे लिवलाए सबदे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया ससरण आई पाए सहजे हर नामर वसिया सच्ची कार कमाए सेवड़ भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर विचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहने, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाहे लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट न किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी।

तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेखै कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावें नो परतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम भुलाया आपो तुद खोआया प्रताप लगा दोहागणी भाग जना के नाही जियो दोहागणी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिरे निमाणिया मैले वेस्त ना कामणी दुखी रहन विहाय जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लय मिलाए जियो हुक्म जिन्ना नो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सही आसे सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे कार रसाया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानी है जो सब सह ले मिलाए जियो सतगुर मिलिया फल पाया जिन विचों अह करण चुकाया दुरमत का दो कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखिया अपनी नजर करै निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिया जित मिलिया नाम वखाणिया सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हाउ सतगुर विटो घुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नजर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माहे समाया तन करता आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया मेरा प्रभ सब किश पाया आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवकी पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो।

मात पिता सुत नेहो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छुटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंधले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनो मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आप कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंधले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैन अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानक के स्वामी धारा अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोई न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो बिसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म ना हारी है। नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जलता।

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखे बन फीका जानिया भय किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निद मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिले ओहे आपे ही आप मोए ओहो जस नानक आप सुने ओहे संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौन ना माया होहया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सद कै जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोय जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोय हर गुर शरण आई पाई है वन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनावन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हों मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत ननाओ पिता जाता होई है गुर तुठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन हर हर लगा चाओ गुरपूरे नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ जब लग जो बन सास है तब लग नाम ते आए चल दिया ना

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ही के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई है कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतन मोलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर एक सहदा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखम तार। सलोक महला पहला। दाती साहेब संधिया क्या चले तिस नाल एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलायका दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनो जो ले छड़ाई। सलोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए। नानक ता पर जापै जां पत लेखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद्यापे तरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक साहेब प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच।

पाए, जब तब संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा, सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सेओ, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा, सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा, अंतर

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराधो सबना ते वड्डा, सब नामै अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखनी, मन खोटे कूड़ियार। पिर कै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौपे कंत कहो, सब दे तरे प्यार। बिन नामै कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावी सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाएंदे, डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोय। हर आवै करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड्याई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख लियोए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियोए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार। पिर छोड़िया कर अपना, पर पुरखै नाल प्यार। तृष्णा कदे न चुके, जल्दी करे पुकार। नानक बिन नामै क्रूप सोहणी, पर हर छोड़ी पतार। महला तीजा। शब्द रति सोहागणी, सतगुर कै पाए प्यार। सदा रावे प्रे अपना, सच्चै प्रेम प्यार। अत सवाल्यो सुंदरी, शोभावंती नार। नानक नाम सोहागणी, मेली मिलन हार। पौड़ी। हर तेरी सब करै उस्तत, जिन फाथे काढ़िया। हर तुदनो करै सब नमस्कार, जिन पापै ते राखिया। हर ने माणिया तू माण, हर डाढ़ी हूं तू डाढ़िया। हर हंकारियां मार निवाए, मनमुख मूड साध्या। हर भगता दे वड्याई, गरीब अनाथया। श्लोक महला तीजा। सतगुर कै पाणे जो चलै, तिस वड्याई वड्डी होए। हर का नाम उत्तम मन वसै, मिट न सकै कोए। कृपा करे जिसे अपनी, तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है, गुरमुख बूजै कोए। महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अंधन हर लिवतार। माया बंधी खसम की, तिने अगै कमावे कार। पूरा पूरा कर छोड़िया, हुक्म सुबारण हार। गुर प्रसादी जिन बुझिया, तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी, तिन मारे जम जंदार। गुरमुख जिनी आराध्या, तिनी तरिया पौजल संसार। सब औगुण गुणी मिटाया, गुरे आपे बख्शन हार। पौड़ी। हर की भगता प्रतीत, हर सब के जानदा। हर जेवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा। काड़ा अंदेसा क्यों की जय, जा नाही धर्म मारदा। सच्चा साहेब सच न्याओ, पापी नर हारदा। साला हो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। श्लोक महला तीजा। अपने प्रीत मिल रहा, यंत्र रखा और तार। साला ही सो प्रभ सदा सदा, गुर कै हित प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल लए, साई सुहागण नार। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नजर करे। मानस ते देवते पए, तया नाम हरे। हम मैं मार मिलायन, गुर कै सब तरे। नानक सह समायन, हरे अपनी कृपा करे। पौड़ी। हरे अपनी भगत कराए, वड्याई वे खालियन। अपनी आप करे प्रतीत, आपे सेव कालियन। हर भगता नो दे आनंद, थिर करी बहालियन। पापिया नो ना दे थिर रहन, चुन नरक कोर चालियन। हर भगता नो दे प्यार, कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला।
ਕਬਦ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਾਇਆ ਕਸਾਇਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਉਤਮ ਸੇਈ ਜੇ ਪਾਪਾ ਪੰਦ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਪਈ ਨਵਨਿਧ ਖਰਚਿਓ ਖਾਓ ਅਠਾਰਹ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਏ ਅਨਹਦ ਤੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਤਿੰਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਉ ਢਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰ ਕਹਿ ਦਰ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਢਾਡੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦ ਕੈ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਿਤੇਵੋ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਦਾਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਾਇਆ ਸੁਧ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਧਾਰ ਭਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾ ਹਸੈ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਪਰਮ ਲਾਇਆ ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਾ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਹਾਓ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਓ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਰਲੋਚਨ ਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਆ ਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਪਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੈ ਕਮਲਾ ਜਿਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਪਟ ਨਰਾ

मिल मेरे रमैया मैले छड़ाए रहाओ, अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्त है न परवेसं, माया मोह ता बिसर गया, जा तजी अले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ, तिन कर दलो करन महाबली, तिन आगर रह मैं रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का, अचरज एक सन ओरे पंडिया, अब किश कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जन मोहे, त्रिभुवन मेख ली लाई। राजा राम अनहद किंगरी बाजै, जाकी दृष्टनाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कालक कनक कर सिख पाया, तिसमै तार चोवै त निर्मलो, रसमै रसन चोवाया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मैं एको योगी, कहो कौन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सौ परम पुलानी, मन राम रसायन माता, श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरिया कै घर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे नर गर्भ कुंडर जब आशत, उर्द ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मदना अहनस, एक अज्ञान सो नागा। ते दिन संभल कष्ट महा दुख, अब चित अधिक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया, तव नर हर मनो बिसारिया। फिर पछतावेंगा मूड़िया, तू कमर कुमत प्रम लागा, चेत राम नाही जमपुर जाहेगा, जन बिचरे अनरादा। रहाओ बाल बिनोद चिंद रस लागा, खिनखिन मोहे ब्यापै, रस में समेद अमृत बिख चाखी, तो पंच प्रगट संतापै। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या, उछलिया काम काल मतया, लागी तो वान सकत गल बांधया। तरन तेज पर त्रे मुख जो है, सारे अवसर ना पछाणिया, उनमत काम महा बिख भूलै, पाप ना पछाणिया। सुत संपत देख एहो मन गर्बिया, राम हृदय ते खोया, अवर मरत माया मन तोले, तो भाग मुख जन्म विगोया। पुंडर केस कुसमते तौले, सप्त पाताल की बाणी, लोचन सरमै बुद्ध बल नाठी, ता काम पव समाधानी। ता ते बिखै

जियो रेन संतन की मेरा मुख लागी दुरमत बिनसी एक बोध्या भागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तुद ते आई एहो दान मुहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया पलिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिस दा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो।

हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नजर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संता सेती रंग न लाए, साक्त संग विकर्म कुमाए, दुलभ देह खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आपो पाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो सरमिया साड़ी जियो। माज महला पंजवा, चरण ठाकर के हृदय समाने, कल कले सब दूर पयाने, सांत सुख।

माज महला पंजवा सबे सुख पय प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लवे अंतर सो रसोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वर्तै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाणे जियो प्रा मृणै की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किशु ना जापे अपने संता नो आप सहाई प्रभरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वट पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदर जागी बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछे नाम सचे का गहना उठत बैठत हर हर गाई है जे सिमरत वार निचल पाई है नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पति आवणिया हाँ वारी जीओ वारी शब्द सुहावने आ अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावने आ रहाओ ना को मेरा हो किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा हो मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावने आ हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण गुर कै शब्द नाम निशाण सबना कादर लेखा सच्चै छूटस नाम सुहावने आ मनमुख पूला ठावर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवने आ सागत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे लिखिया लेखना मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावने आ पे येड़े पिर जातो नाही झूठ विछुनी रोवे ताही अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बख्सावने आ पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत विचारा आवन जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावने आ गुरमुख बूझे कथ कहावे सच्चे ठाकर साचो पावे नानक सच कह बेनंती सच मिले गुण गावने आ माज महला तीजा कर पहला कर्म होवे सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हाँ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावने आ हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ गुरमती प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावने आ रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखे ठाक रहाए गुर की बाणी अंदर गावे सहजे पद करावने आ इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलैता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावने आ सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावने आ पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी अज्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाक रहाया गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावने आ हाँ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने आ जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्से तिस दे वड़ियाई नानक नाम ते आए सदा तू जम्मन मरण सवारने आ माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कै गुणी समावने आ हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावने आ जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावने आ रहाओ आप सुनै तैं आपे वेखै जिसनों नजर करे सोई जन लेखै आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावने आ जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से वडभागी पूरे करम मिलावणिया पेयड़ तन अंदन सुती कंत विसारी अव

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चे शब्द सच्चा सा लाही सच्चे मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कणेरे तू एको नहीं चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै न मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया
ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ। ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਨ।

माया मोहे जोहे अजम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सह सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

लिख दिया लिख दिया, कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मुख द्वार। सच कागद कल मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरप्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगति राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंदन हर गुण गावणिया, रहाओ आपे करता कारण कराए। जित पावे तत्कार लाए, पूरे भाग

आपे करे कराए आपे, आपे थापो थापे आपे, तू ते बाहर कछु ना होवे, तू आपे कर लावण्या, आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरमुख सहज समावण्या, आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस्या विखाले सो वेखै कोई, नानक नाम वसै कटे अंतर, आपे वेख विखालण्या, माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई, गुर प्रसादी कर ही मह पाई, सदा सिरे वी एक मन त्याई, गुरमुख सच समावण्या, हौं वारी जियो वारी, जग जीवन मन वसावण्या, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावण्या रहाओ, करी मैं तरती तौल पाताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता, गुरमत सहज समावण्या, काया अंदर हो मैं मेरा, जमण मरण ना चुके फेरा, गुरमुख होवे

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख बन जे सदा वापारी लहा नाम सद पावने आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जाय के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावने हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावने रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले दे सजाए कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने पेयड़ पिर मन वसाया पूरे गुरह दूर दिखाया कामन पिर राख्या कंठ लाए सबदे प्रदा वैसे सुहावने आपे देवै सद बुलाए अपना नाम मन वसाए नानक नाम मिलै वड्याई अंदन सदा गुण गावने माज महला तीजा उत्तम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै करमा है उदासा हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावने हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावने गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चै सोभा पावने रहाओ अलाख्या पेओ हर रया समाए उपाय न किती पाया जाए कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मिलावने दूजे पाए पड़े नहीं बूजे त्रिबद माया कारण लूजे त्रिबद बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावने एहो मन चंचल वस न आवे दुबदा लागे दे दिस्तावे बिखका कीड़ा बिख मैं राता बिखी माए पचावने हाँ हाँ करे तै आप जनाए बहु कर्म करे कि थाए न पाए तुते बाहर किशु ना होवे बक्से शब्द सुहावने उपजे पचे हर बूजे नाही अंदन दूजे पाए फिराही मनमुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावने पिर पर दे सिंगार बनाए मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए हलत ना सोभा पलत ना ढोई बिरथा जन्म गवावने हर का नाम किने विरलै जाता पूरे गुर कै शब्द पछाता।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख

अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवणिया।

क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बने अवर न जानणिया। जिस कहो तू प्रभु पया सहाई, तिस तत्ती वाव न लगे काई। तू साहेब सरण सुखदाता, सतसंगत जब प्रगटा बनिया। तू ऊचा था हुआ पारा मोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला। तू मीरा साची ठकराई, नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवां घर दूजा, नित नित दै संभालीऐ, मूला मनो विसारीऐ। रहाओ संता संगत पाईऐ, जे जमकै पंथ ना जाईऐ। तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलै न लागै गाल जियो। जो सवरंदे साई है, नरक न सही पाई है। तत्ती वाव न लगई, जिन मन उठाया जियो। सही सुंदर सोहणे, साध संग जिन बहणे। हर तन जिनी संजया, सही गंभीरिया पार जियो। हर अमे और साइन पीवी है, मोह डिठे जन कै जीवी है। कार्ज सब सवार लै, नित पूजो गुर के पाव जियो। जो हर कीता अपना, तने गुसाई जापना। सो सूरा प्रधान सो, मस्तक जिसदै भाग जियो। मन मंदे प्रभ अवगाहिया, एह रस भोगण पातशाहिया। मंदा मूल ना उपजियो, तरे सच्ची कारै लाग जियो। करता मन वसाया, जन्मै का फल पाया। मन पावंदा कंत हर, तेरा थिर होवा सुहाग जियो। अटल पदार्थ पाया, पै भंजन की शरणाया। लाए अंचल नानक तारिया, जिता जन्मया पार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माज महला पंजवां घर तीजा। हर जप जपे मन धीरे, रहाओ सिमर सिमर गुर देओ। मिट गए पै दूरे, सरन आवै पार ब्रह्म की। ता फिर काहे झूरे, चरण सेव संत साध के। सगल मनोरथ पूरे, घट घट एक वर्तदा। जल थल महियल पूरे, पाप बिनासन सेविया। पवित्र संतन की धूरे, सब छड़ाई खसम आप। हर जप पई ठरूरे, करते किया तपाव सो। दुष्ट मोए होए मूरे, नानक रता सच नाए। हर वेखै सदा हजूरे, बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी, किते ना आवे काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजे नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाइये विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, पठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया, होवे आनंद कणा। संत जना मिल पाईऐ, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई, कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना पाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। वैसाख तीर्ण क्यों वाडिया,
जिन्ना प्रेम बिशोहो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तोहो। पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोहो। एक सहर के नाम बिनो अगे लइए खोहे दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोए। प्रीतम चरणी जो

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण है मथे जो लिखे आस रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिए सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादोए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत लख सिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनस सी तित वेला कहसन प्रेत पकड़ चला इन दूत जम किसे ना देनी भेत छड़ खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हथ मरोड़ै तन कपे स्याहो होवा सेत जिहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत नानक प्रभ शरणागति चरण बोइथ प्रभ देत से पादोए नरक ना पाईऐ गुर रखण वाला हेत असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हों तन कह लागा पाए विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आ गाए आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत ना जाए प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असु सुखी वसंदियां।

विच ना कोई कर सके किस्थ रोवे रोज, कीता किशु ना हो वई लिखिया तुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब बियोग, नानक कहो प्रभ राख लेहे मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग बिरसे सबे सोच, मंगर माहे सुहंदिया हर पिर संग बैठड़िया। तिन की सोभा क्या गणी जे साहिब मिलड़िया। तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़िया, साजना ते बाहरी सेरहन अकेलड़िया। तिन दुख न कबहू उतरे ऐसे जम कै वस पड़िया। जिनी राव्या प्रवे अपना से दिसन नित खड़िया, रतन जवेहर लाल हर कंठ त न जड़िया। नानक बांचै धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया, मंगर प्रभ आराधना बहुना जन्म रिया। पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर नाम, मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो, बिख्या पोहे न सकई मिल साधु गुण गाहो। जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहो, कर गै लीनी पार ब्रह्म बौड़ना विछड़िया हो। बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगमया गाहो, सरम पई नारायण नानक दर पईया हो। पोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बक्से वे परवाहो, माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान। हर का

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाई है खोज डिठे सब गैण आप कमाण है विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख ले होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम आप गाद बोध किशंत ना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की हो इशार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंतन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस न विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगमया माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मालिक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दी

डिठ मैं नानक जगत हुए का तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या गम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिन्ना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सोसे वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख बढ़ाती जो मन चेत तुद ध्याय दे मेरे सच्चिया बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला जियो पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नजरी आया हर इको सूट सुजानी है। पौड़ी तुद आपे जगत पाए कै तुद आपे तंद लाया। मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया। तिसना अंदर अगन है न तिपतै भुखा तिहाया। सहसा उस संसार है मर जमै आया जाया। बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया। गुरमती नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना। पैरा बाजो चलना मन हथा करना। जीबै बाजो बोलना ओ जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा दिसै सुनिया जानिया सौ ना पाया जाए। रोहला टुंडा अंदला क्यों गल गै तहाए। पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे। नानक है सियाणिए इवकंत मिलावा होए। पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया। हम मैं गर्व ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया। ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया। इकना बक्सै मेल लै गुरमति तुदै लाया। एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया। होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया। पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया। ओहे अंदरों बारो निर्मले सच्चै न समाया। श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आल कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार। बग्गा रत्ता पी अला काला बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार। ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार। महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै। अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै। अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने। हम विच दुख काले नानक गुरमुख हम मैं तुटै ता हर हर नाम ते आवै। नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै। पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग। जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया। सुख उठे रोग पाप कमाया हर खो सोग विजोग उपाय पाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सोहोग न चलै चलाया। श्लोक महला पहला।

या मन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या से सुखाली की जय भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेवखवासी आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी, जाति रह के हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिय चखी है, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज विचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताकती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे, नानक अजब डेठ। महला पहला। वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए, खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए, पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए, पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया, आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया, मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया, सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी। महला पहला।

करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सोवा। जेते जी जीवे लै साहा, जीवा ले तां के असा। नानक ज्यो ज्यो सच्चे पावे, त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला, एक मांसाहारी एक तृण खाए, एक नाशक्ति अमृत पाहे, एक मिटिया मैं मिटिया खाहे, एक पौण सुमारी पौण सुमार, एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए, नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार, कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम ते आई है। दूजी कार लग जन्म गवाई है, वेणा में सब विस पैज खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाइए, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा साला है, पत स्यों जाइए। सलोक महला पहला, तुद पावे ता वावे गावे, तुद पावे जल नावे, जां तुद पावे ता करे बिपूता, सिंगी नाद वजावे। जां तुद पावे ता पड़े कतेबा, मुल्ला सेह कहावे, जां तुद पावे ता होवे राजे, रस कस बहुत कमावे। जां तुद पावे तेग वगावे, सिर मुंडी कट जावे, जां तुद पावे जाए दसंतर, सुन गल्लां कर आवे। जां तुद पावे ना इरचावे, तुद पाणे तू पावे, नानक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला।

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कह ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ कट ही माही। पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओह ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर।

गुरमत देह भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवार सांझ बयाल, इत उत मनमुख बांधे काल, अहनिसरा

तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक

लब लोभ मुझ कूण कमावै, बहुत उठावै पहारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तो आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे, रही है छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाकछ लिया, ता मन भला पाया।

नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोना रूपा कपड़ केरे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दें दे नीम दिवालो सारी पस मंदिर की टेरी। संचे संचना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मान्या जाना होग तिसै का पाना रहाओ। शव हमारा ठाकर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रात तिसै की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना आगे जम दर बिखम कना रहाओ। उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी साधना अमृत केल करे नित कामनो अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

आओ केते रुख बिरखा मचीने केते पशु उपाए केते नागकुली में आए केते पंख उड़ाए हाट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी करे आवे अगो देखे पिछों देखे तू ते कहां छुपावे तट तीर्थाम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा कठी मैमन जारा जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे जियाड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवै दिन राती गौड़ी बैरा गण महला पहला रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए नाम ना जान्या राम का मूड़े फिर पाछा पछताहे रे रहाओ अंता तानो तरनी तरे अंत ना चाहया जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए आपन लिया जे मिले ता सबको पागट होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लूचे सब कोए नान करना जिन किया सोई सार करे हुक्म ना जापी खसम का किसे वडाई दे गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाऊं जियो मैं बनजार नराम की तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ कोकल होवा अंब बसा सह शब्द विचार सह सुभाए मेरा सहो मिले दर्शन रूपिया पार मछली होवा जल बसा जी जंत सबसार उर्वार पार मेरा सहो बसे हो मिलोगी बहा पसार नागन होवा तर वसा शब्द वसे पव जाए नानक सदा सोहागनी जन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी देव की महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होय बिचारो तितकर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे नरपौ का सोहेला हों वारी जाओ जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े समालिया नो देखे गा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़िया जो हवै सैब स्यो मेल कार कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग गौड़ी गुआरे री महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वै सोई मेरा प्रभु सब विद्या पे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाणे सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पैराचे सच रंग समाए रहाओ गुर मिले हर मन वसे सुभाए मेरा प्रभारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाह अंत ना पारा वार मेरा प्रभ बख्से बख्शनहार गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसे सच सोए साच वसे साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते सच

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भोजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

जब गुर मिलया तब मन वसाया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पगतूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै।

सारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे हरे आपे वेखै विकसै आपे हरे आप जपाए आपे हर जापे हरे आपे सारंग अमृत धारा हर अमृत आप ही आवनहारा हरे आप करे आपे निस्तारा।

हर पूज कर आई, हर भगत भंडार लहाई दा आपे वरताई। लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई। जन नानक हर का दास है हर की वड्याई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा। किसानी किसान करे लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे मेरा पुत धी खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिडाए, मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम। गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ। लै तुरे सौदागरी सौदागर धावै, तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै। त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया बै हट कमाए। मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए। एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास, गुरमति सो

हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे। जन नानक की लजपात गुरु है, सिर बेचो सतगुरे आगे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत। गुर मिलया आप गवाया, हम मैं रोग गया सुख पाया। तन तन गुरु हर राया, राम गुर कै बचन हर पाया। रहाओ मेरे हियर प्रीत नाम राय की, गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगे, जिन विछड़िया हर गल आया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हिरदे नाल दिखाया। सहजानंद भया मन मोरे, गुरे आगे आप विचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै सबदा नहद। गुरमत मनुआ गावै, वडभागी गुर दर्शन पाया। तन धन गुरु लिवलावै, गुरमुख हर लिवलावै। रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा, मन गुर की कर कमावै। हम मलमल तोवै पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावै। हृदय गुरमत राम रसायण, जेवा हर गुण गावै। मन रसक रसक हर रस आगा।

जन नानक कौ हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै। तू जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुखरमा संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगण सुजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े तुरकर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठ टोल टोल मिलिया जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सदगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो हर विटड़ियो सदा कोले जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपूरा वेख विगस जियो हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनदर हस जियो हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आपो पाए हर आपे वेख हर आपे कर लाया जियो एक खावे बख्स तोट ना आवै एक ना फुका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना पिख मंगाया जियो सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाही जियो हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दाल दो दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रब डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरागिया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मंत्र भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मंत्र आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हां तुद विटड़िया।

हर हर नाम जपत जन तारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भए, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहो सब जाए। गुर पूरै सब भ्रम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा, करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार, अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु सियाण पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख, नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जस आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै ठेरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन माया संगराते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। जो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे। निमखना तृष्णा तेरी लाथे, हर रस का तू चाखे साधो। चाखत होए रहे बिस्मादो, अमृत रसना पियो प्यारी। एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पीतर।

उतना जो है। माया मग्न कछु है मोह है, उधरै आप तरै संसार, राम नाम जप एक ओंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाकै माथा एहो निधान, सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना, कहो गुसाई मिली है के है, जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना, दुहां सरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, कल युग में मिले आए संजोग, जिचर आ गया तिचर पोगे भोग, जलै ना पाई है राम स्नेही, किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावे बहुजोन पवाइए, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी को दुख ना जमाने। कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगह परवानिया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, हाव तन मन तो पाक सच नाए, हर गुण गावे सही सुभाए। रहाओ पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल। खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए। गौड़ी महला पंजवा, डर डर।

हमारा अंतर्यामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी, हम दास तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा, जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जा को तुम दीनी प्रभ धीर, ताकै निकटन आवै पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा, दुलभ देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मर न जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद महे समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई का को बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संयोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारे हो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी महला पंजवा, वड़े वड़े जोधी सै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड़ा माया वड्याई, सो वड़ा जिन राम लिवलाई। रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक क्यों तत् बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा, पूरा मार्ग पूरा इसनान, सब कुछ पूरा हृदय इनाम। पूरी रही जा पूरा राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूर्ण राजयोग। हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक। करण हार सदवसै हदूरा, कहो नानक मेरा सदगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की तूर मिट अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट। संत का दर्श पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम। रहाओ संत का संग मिटिया हंकार, दृष्टिया वै सब एक अंकार। संत सो प्रसन्न आए वसपंचा, अमृत नामृत लै संचा। कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल प्रगास है, हर सिमरत त्रास सबनास है। सा मत पूरी जित हर गुण गावे, वड़े पाक साधु संग पावे। रहाओ साध संग पाई निदनामा, सा संग पूर्ण सब कामा। हर की भगत

साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन में लेख। रह रहे आ सरबत स्वामी, गुण गावे नानके अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम आधारा, पौ ना व्यापै तेरी सरना। जो तुद पावै सोई करना रहाओ, सोग अर्ख मैं आवन जाना। तिन सुख पाया जो प्रपाणा, अग्न सागर महाव्यापै माया। से शीतल जिन सतगुर पाया, राख ले प्रभ राखण हारा। कहो नानक्या जंत विचारा, गौड़ी महला पंजवा। तुमरी कृपा ते जपिए ना, तुमरी कृपा ते दर गए था। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए। रहाओ तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते परम पौ भागे। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कड़ा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा। ना बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी। ना बिहून त्रिगदेह बेगानी, रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग। परत बिहून कहां सोहाग, नाम बिसार लगे अनसवाए। ताकि आसना पूजे काए, कर कृपा प्रभ अपनी दात। नानक नाम जपै दिन रात, गौड़ी महला पंजवा। तू समर्थ तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी। पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदरै जन कोट। रहाओ जेते जी ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख नेरे। जो किश वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा। कर कृपा दीजै प्रभदान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वडभागी। जां की राम नाम लिव लागी, जां कै हर वसिया मन माही। ताको दुख सुपने पी नाही, रहाओ सर्ब निधान राखे जन्माहे। ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए। पार ब्रह्म जन रया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै। दास की तूर नानक कहो दीजै, गौड़ी महला पंजवा। हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसै मन आए। पज मन मेरे को नाम, जी तेरे कै आवै काम। रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता। छोड़ उपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख। बिखम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौन दर करे। गौड़ी महला पंजवा, हिरदय चरण कमल प्रभ तारे। पूरे सदगुर मिल सतारे, गोविंद गुण गावो मेरे पाई। मिल साधु हर नाम ते आई, रहाओ दुलभ देह होई परवान। सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूर्ण पद पाया। साह संग पै परम मिटाया, जत कत देखो तत रहया सुमाए। नानक दास हर

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर तन को वा पारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लखबारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किलबिक सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यों आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोभा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सवान। कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ के चरण मन माहे ध्यान। सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई। कोट जन्म की मन ले जाई। रहाओ हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बांशत सगले फल पाई। जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान। कहो नानक सही जन।

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रांबिन से गाए गुणनीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाका सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रवृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महागरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय समाल, घर आए गोविंद लै नाल। हर हर नाम संतन कै संग, मंत्र राता राम कै रंग रहाओ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबक सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरे है दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वड़ पागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक कौ मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। साधु संग सिमर गोपाल, बिना मैं झूठा तन माल रहाओ। रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा। जग में आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ता का मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यो सागत नहीं संग। ओह बिखई ओस राम को रंग रहाओ। मन असवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पचारे नारी। बैल कौ नेत्रा पाए दुहावे, गऊ चर सिंह पाछे पावे। गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावे बिन पूंजी। नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा, सामत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ।
सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सबते ऊच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लय पूर्ण।

गौड़ी महला पंजवा नित प्रत नावन राम सर की जय। चोल महारस हरे अमृत पी जय रहाओ। निर्मल उदक गोविंद का नाम मज्जन करत पूर्ण सब काम। संत संग तै गोष्ट होए कोट जन्म के किलविख खोए। सिमरै साध करै आनंद मंत्र रविया परमानंद। जिसै प्राप्त हर चरण निधान नानक दास तिसै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा सो किछ कर जित मैल ना लागै। हर कीर्तन मैं एहो मन जागै रहाओ। एको

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ, सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा। तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईए, रसना राम नाम जस कहिए रहाओ, तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जाप, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाई है,

नानक मांगत नाम आधारे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल ते आगी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रहनी। है कोई संत मिलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की। अनक पान तिस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले। बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर। जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट तहर नानक। जन्म कृतार्थ सबल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सह सुखदाता, मोहे मार्ग दे बताई। रहाओ अंतर अलख न जाई, लखिया विच पढ़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। एक बसद बिन पंच दुहेले, ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृहो तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यों पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज पया प्रमखिन मैं नठा। मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै। सतगुर मजै बतायो, रहाओ जात का देखो ताता तुम ही। मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती। जो सुनतो है रगरायो, लयो सैसा बंधन गुर तोरे। ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी। सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा। गुर पर्दा खोल दिखायो, नाव निद नाम निधान इकठाई। तो बाहर कैठे जायो, एक कनक अनक भांत साजी। बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है। इव तत्त मिलायो,
गौड़ी महला पंजवा औध कटै दिन सरै नारे मन गुरमल का इसवारे रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी झांको आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्भ

की ओटा साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया, जीत लै ओए महा बेखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अवनासी राया, निरपो संग तुम्हारे बसते, एहो डरन कहां ते आया रहाओ। एक महल तू हो हफारो, एक महल निमानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू प्रणत बगता, एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज, एक महल कशु ना लेता। काठ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पिख करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साजियाने। अनक कोठरी बहुत भात करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे महल राखे तैसे रहना, क्या हो करे विचारा। जिन किश किया सोई जाने, जिन ए सब साजी, कहो नानक परंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ, उर्ज रे ओरे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो पसुआ। रहाओ जो जाने तू अपने का जय, सो संग न चाले तेरे तसुआ, नांगो आयो नांग सिदासी, फेर फिरे वार काल ग्रसुआ। पेख पेख रे कसुंब की लीला, राच माच तिनहू लव हसुआ, शीजित डोर दिन सर रैनी, जी को काजना कीनो कछुआ। करत करत इवी ही बिरधानो, हार्यो उगते तनखी नसुआ, ज्यो मोयो उन मोनी बाला, उसते कटे नाही रुचसुआ। जग ऐसा मोय गुरे दिखायो, तव शरण पर्यो तज गर्भसुआ। मार्ग प्रभ को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन

बोले, वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुखदाते, अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते। प्रम पौ काढ़ किए नह केवल जबते हम मारी, जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी, चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया। जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया, गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावै तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ। सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही, शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही। पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही। गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ। अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है, देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा, यवरना किन्ही कीता। तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जगत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला, राख लेहो पिता प्र मेरे अनाथ कर प्रतपाला। जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कै पाचे, कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाचै।

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेदारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज।